0: Its inhabitants will say, "This is a company bursting in with you. No welcome for them. Indeed, they will burn in the fire."
1: ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tariqhalal.com.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tariqhalal.com और घर बैठे ताज़ा मीट हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: इंसान कोई हंसते हंसते भी हंसेगा वाला है। जिंदगी की एक और हसीन मुस्कुराती सुबह, बुध की सुबह, वेडनेसडे मॉर्निंग, हफ्ते का दूसरा मिड मॉर्निंग शो। हंसते नाचते गाते गरम गरम चाय की प्याली के साथ, अब मेरा साथ पूरे एक बजे तक।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और जहां वहां में और वहां एक नजर,

0: Believe it, we're actually going.
1: Flights booked, tickets sorted, but hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
2: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
1: Exactly, flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
2: Come on, let's go win this.
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
4: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer. आज नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की. प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए. माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
5: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
6: Punjabi hit of the hour.

0: gecind, ik gecind. Teri meri ik gecind. Program ke pehle hisse ka pehla Punjabi song.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, janab. Sabse pehle currency ke taza tareen rate US dollar 1.32. Indian rupees mein 126 rupees 50 paise. Pakistani rupees mein 367 rupees 6 paise. Aur Bangladeshi taka 164 taka 6 paise. Sri Lankan rupees 438 rupees 47 paise. Aur Afghani rupees 86 rupees 5 paise.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और Southall वालों का पैगाम है दुबई के लिए बेहतरीन ऑफर के साथ एकदम नई डील. जी हाँ जी 629 यानी 629 पाउंड पर पर्सन पे थ्री नाइट्स का स्टे और ट्रेवल बाय 10 दिसंबर 10 दिसंबर तक ये ऑफर आप हासिल कर सकते हैं. एमिरेट्स एयरलाइन से आपको जाना होगा और कॉल कीजिए इनका नंबर है 020-8843-4344 और विजिट कीजिए southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: और अब News Update Leica Radio के प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास हेडलाइंस. ट्रंप का वस्त बुद्धती इंतखाबात के बाद यमन की हौसी मलेशिया से निमटने का इशारा. शाही खानदान के साथ क्रिसमस मनाने से गुरेज करेंगे शहजादी हैरी और मैकन मार्गल को साबिक शाही मुलाजिम का मशवरा. बरतानवी शहरी का जेट GDPP की मदद से पार्किंग का जुर्माना मंसूख. ईरान में करमान में मुसल्ला हमलों में मुलविस एक शख्स को सजाए मौत. अमरीकी सेनेट काम ने आबदे हर्मस पर ईरान के कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया है. व्हाइट हाउस की तरदीद के बावजूद अमरीका और इसराइल का इंतखाबात से कबल ईरान पर नए हमलों पर गौर. हौसी मलेशिया ने हरमैन शरीफ पर जारियत करके गांव ने जुर्म किया सऊदी काबीना का बयान. सऊदीया में रियाज और जनूबी इलाके में 3 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए. मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में यकसा खतबात जुमे की कोशिश नाकाम. अफगानिस्तान भर में BBC की MF रेडियो नशरियात मुअत्तल. तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस. मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर.
1: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर. दिस इज लाइक रेडियो.
0: और सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज हो गया 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 101 पाउंड 56 पेनिया 101 जी हाँ 101 पाउंड 56 पेंस पर ग्राम. जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट आज का रेट है 37,200 रुपए 37,200 रुपीज.
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट. विजिट hartihanks.com.
2: Leica Radio.
3: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.
1: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
6: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Virgin Islands Stand Back of India वाले का पैगाम इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं. आज के रेट दे रहे हैं ये इंडियन रुपीस ब्रिटिश पाउंड के बदले में 125 रुपए 15 पैसे.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester.
1: Leica Radio. Yakinan, so if you said 100%, yeh Leica Radio Greater Manchester ka program mid morning show. Welcome to Manchester and welcome to Bradford. Midland, Wolverhampton, Leeds, Huddersfield and Halifax. Manchester se leke London tak tamam doston ko salam. Bahut hi mohabbana sa salam aur qabool kijiye pyar bhari namaskar, sat sri akaal, kaam chho, kaam najin. Program Bazme Tabish ki ibtida Rabbe Jaleel ke babarkat naam se jo mere aur aapke dilon ke bhed khoob janta hai. Sunte kaano aur kaam karte haathon main hoon aapka mezban. आपको प्राइम टाइम प्रेजेंटर, आपका होस्ट, आपका घोस्ट मुझे कहते हैं अपने ताबिज. बुध का दिन है आज साहब, हफ्ते का तीसरा काम का दिन वेंसडे यानी मिड वीक. और अक्टूबर महीने की हो गई आज 14 तारीख. हमारी डायरी के पन्ने पे कुछ नहीं लिखा. अगर आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा हो, किसी की बर्थडे है, सालगिरह है, जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है या ऐसा कुछ जो मुझसे आप छुपाते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आपको पता है मैं तो किसी को बताता नहीं हूँ. हाँ नहीं, मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की, आप जानते हैं मुझे. 07703403020 के नंबर पे आप मुझे खत लिखते हैं और ये खत का सिलसिला शुरू हुआ है कोई 9:45 से जो इंशाल्लाह 1 बजे तक जारी और सारी रहेगा. मंडे को मैं आया नहीं था, कल था ट्यूसडे, कल मैंने पहला शो किया था इस हफ्ते का, तो लिहाजा आज अब तीसरा दिन है, लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि आज आपसे पहली पूछ ली जाए तो बेहतर होगा, वरना बात इससे आगे बढ़ सकती है. बात इतनी हो या उतनी हो, बात यह है कि बहुत सारे काम छोटे मोटे होते हैं लेकिन उनकी कोई पैमाइश नहीं होती. मिसाल के तौर पर कोई मुझे बताएगा कि इतने और उतने में क्या होता है. यानी अगर आप इसे यूं कहें कि ये बताएं कि इतने और उतने कितने होते हैं मान जाऊंगा अगर बता दिया तो कसम से. इतने और उतने कितने होते हैं और तुम्हारा साथ

इतना प्यार करो कि दुनिया में दोबारा आने की तमन्ना जागे। प्रोग्राम के पहले हिस्से का पहला क्लासिक सॉन्ग आसिया बहन आपके नाम करेंगे रोजडेल में और शमीम बानो बेगानी आपके और एंथनी भाई वारिंगटन में फरजाना नसीब बाबर भाई खालिद महमूद भाई शब्बीर पटेल भाई और कजोरी जी।

0: जी हाँ, फिल्म का नाम था जांबाज। सपना मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज थी।
1: लाइक अ रेडियो।
0: जी हाँ, लाइक रेडियो ग्रेटर। आसिया बहन हंस रही हैं और कह रही वाह ताविश तुम बिना। आपने लिखा कि इतने और उतने दो होते हैं, ये बताइए इतने और उतने कितने होते हैं। लैला कहती है हमें, बरी से कहती है लैला ताविश तुम्हें कुछ और नहीं मिला था पूछने के लिए। नहीं आज मुझे जल्दी में कुछ और नहीं मिला था। हमजा वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेनसडे। रुखसाना आमिर तैयारी में हैं, आज काम पे जाएंगी और जब तक काम पे जाएंगी जब तक मुझे सुनेंगी। बरी में हमारे साथ होते हैं अमन और चंदा और बोल्टन में साथ निभाते हैं हमारा रोजाना नदीम अजहर बाजवा। कैसे हैं बाजवा? जरीन हमारे साथ हैं आस्टन लाइन में। शकील ममदानी, जाहिद अब्बास, सिर्फ अब्बास, साजिदा सुमरो और खुशबू हमारे साथ होंगी प्रेस्टन में। यूसुफ साहब हैं हमारे साथ ब्राइटफील्ड में कराची वाले। नईम मलिक और अंकल वकार नायाब हमारे साथ होंगी, मुस्तकिल नायाब हमारे साथ होंगी, हमारी इंतहाई नायाब प्रेजेंटर। प्रेजेंटर कह दिया मैंने, लिसनर हो सकता है शायद आप प्रेजेंटर बन जाएं। अगर किसी को शौक हो ना वैसे प्रेजेंटर बनने का तो एक दफा मुझे बताना जरूर। देखिए आज की क्या ऑफर दिए ताविश ने। गुलाम अली भाई हमारे साथ है जी ब्लैकबर्न में, वहीं होंगी शमीम बानो बेगानी। लंदन में है युगेश भाई, इम्तियाज भाई, उनकी बेगम सनावर, हमीदा जी और महा ने हमें आज हमें सबसे पहले मैसेज किया था। महा गुड मॉर्निंग।
1: Like a radio.
2: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet, or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange, or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
3: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो?
5: दिल चाहता है ऑन इट्स 25th एनिवर्सरी एट 2 PM दिस संडे एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा।
6: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी, तुम्हें क्या लगता है?
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saff/uk।
7: Sunshine, skyscrapers and souks
8: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
9: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
9: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.
10: No, sorry, mate.
11: No, we don't have that part.
10: Have you tried down the road?
12: Get it in, but it won't be for a few days.
13: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.

0: करते।
1: हाँ, अगर तुम प्यार करने देते तो तुम्हें क्या पता कि हम तुम्हें कितना प्यार करते।
0: तो तुम्हें कितना प्यार करते।
1: हाँ ना, बताओ ना, इतने और उतने कितने होते हैं।
0: प्यार करते।
1: बातों ही बातों में इस रिडल के बहाने मुझे एक लफ्ज मिल गया, इतने या इतना या कितना। इस लफ्ज से जुड़े कोई गाने आपके जहन में आते हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हमारी डायरी के पन्ने पे तो कुछ नहीं लिखा भाई। रिडल साथ साथ चलेगा और साथ साथ गाने चलेंगे, इतने जितने कितने। जिस जिस सॉन्ग में भी ये लफ्ज होगा जल्दी से बताओ मुझे, 07 03 40 30 20।
2: Like a radio।
1: बुध की सुबह, हर सुबह के 10:00 हो गए 52 मिनट, पाकिस्तान में दोपहर के 2:52 और भारत में 3:20। बहुत शुक्रिया एंथनी भाई ने कहा, थैंक यू एंड लव यू दाविश भाई, आई लव यू टू एंथनी भैया। गैटली में अहमद हमारे साथ है, नसीर भट्टी साथ निभा रहे हैं जी हमारा लिस्बन में, नौशाद अली भाई और एक और हैं साहब सलीम भाई हैं, कोई सलीम भाई कहते हैं। यार दाविश भाई, ये जांबाज का गाना लगा के आपने मेरा दिन बना दिया यार, अच्छा लगता है आपकी शादी का गाना है। सलीम भाई ने पहली दफा ज्वाइन किया है बनले से, बनले में हमारे साथ होते हैं रोजाना नौशाद अली भाई। और नेल्सन में है खालिद महमूद भाई हैं, वहीद इकबाल भाई हैं, और पहलवानों के पहलवान है जी एक्रिंटन में हमारे साथ निभाते हैं रोजाना एसपी पहलवान सज्जाद पहलवान, शुमाइल नवीद हमारी बहन होती है वहां पे। शब्बीर पटेल भाई ने मैसेज किया और सलाम कहा, बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। जरीन हमारे साथ हैं आश्चन में, आश्चनी में हमारे साथ निभाती हैं दमयंती दीदी, नवरात्रि बना रही हैं रोजाना, आज उसका चौथा दिन है भाई। और वहीं होती है सीमा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रुखसान अफजल हमारे साथ निभाएंगे रोजडेल में होंगे अदनान, और शिराज भाई हमारे साथ होंगे जी ओल्डम में होंगी मिसेज नाज, और लिवरपूल में रुखसाना इलाही।
2: This is like a radio.
1: जी हाँ जी, लफ्ज आ गया कितना, इतने और उतने कितने होते हैं। सही जवाब किसी ने दिया ना आज तो फिर।
0: जी करे देखता रहूं
3: क्या

जी हाँ जी, आज नाप तोल का आशारी निजाम पूछा है हमने। इतने और उतने कितने होते हैं? ढूंढते रह जाओगे और सर धुनते रह जाओगे। लाहौर में आज काफी दिनों के बाद हमारी जापानी गुड़िया हमें सुन रही है भाई, अपने बेटे सुभान के साथ। सुभान, हाउ आर यू? वेलकम टू लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।

0: ना दूरियां बढ़ाना हमको गम लगेगा, जितना भी कर लो प्यार
1: हमको तो कम लगे।
0: मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इस
2: Like a Radio,
0: इन दो एक ढाई लफ्जों से जुड़े, इतना जितना जितना इतना और कितना। शुक्रिया आसिफ बहन, आपने हमें बहुत सारे गाने लिख के भेजे और ताबीर ने हमें कई सॉन्ग लिख के भेजे हैं, मैं उन्हें भी शामिल करता हूँ थोड़ी सी देर में। शुक्रिया ताबीर, और मेरी बात की थोड़ी सी जो है वो गलती कह लें या कह लें कि बहरहाल कोई बात नहीं है, मेरी जापानी गुड़िया तो हमेशा लाहौर में होती हैं, होती हैं वो जापान में हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं ताबिश, एक्चुअली मेरा बेटा है जो जापान से आया हुआ है और हम इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में मुझसे मिलने आया है वो, तो मैं उससे मैं उसके साथ हूँ और तो मैं सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है, ये हो तो पाकिस्तान में ना, मेरे पाकिस्तान में। मलिका कहती है इतना उतना कुछ नहीं होता, ताबिश कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। तो वह चटोरे लोगों की अकल काम नहीं करती वैसे। झंझर और क्रीम का जो है वो पंकज केक खा रही है तो वैसे ही होगा। चौधरी अयाज भाई मेरे साथ है, मेरे भाईजान, और कजोरी जी भी हमारे साथ है, मुस्तकिल एंजॉय कर रही है हमारे सॉन्ग्स को। शिकार मूवी से सॉन्ग था, हाँ जी बिल्कुल। उमर वालेकुम सलाम, वेलकम। शब्बीर पटेल भाई कहते हैं ताबिश भाई इतना मजा आता है ना, आपने मजा कहा ना, मुझे भी मजा आ गया। हमारी गुजराती बहन भाई अक्सर जो है वो लफ्जों में थोड़ा सा उनका सीन और शीन में और चे में जरा सा फर्क होता है, लेकिन इनकी मोहब्बत अपनी जगह होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शब्बीर भाई थैंक यू, इतनी तारीफ ना किया करें मेरी, मैं मोटा हो जाऊंगा। तो बहुत सारे जवाब मेरे पास धीरे धीरे आ रहे हैं, इतने उतने कितने होते हैं ये बस मैंने आपसे पूछा है, मैं क्या करूं बस। हाँ
2: ये है लाइका रेडियो।
3: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन, कौन और कैसे इन वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
12: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
13: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
2: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।
0: जी हाँ, वेलकम बैक। और किसी ने भी मुझे अभी तक पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं बताया था जिसमें लफ्ज इतना या कितना होता, लेकिन फरीद भाई जिंदाबाद भाई, पूरे के पूरे ये मुसीकी के इंसाइक्लोपीडिया

किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा। बेहतरीन और खूबसूरत गीत की फरमाइश और प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में हमेशा मेरा रोजाना फरीद भाई आपका हाथ होता है और आज तो ताबीर का भी हाथ है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है आसिम कहाँ है। आसिम आज गैर हाजिर है भाई, कभी कभी गैर हाजिरी होनी चाहिए। एजाज भाई हमें सुन रहे हैं। एजाज भाई आपने कहा मुझे भूल गए ताबीज भाई। ना जी ना। एजाज भाई आपकी कसम। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। आप वो लोग हैं, उन लोगों में से आप लोगों का शुमार होता है जो लोग शांत बिल्कुल चैन से नहीं बैठे होते घर में, बल्कि काम कर रहे होते हैं। काम भी वो जो ड्राइविंग करना। जी बिल्कुल, ड्राइव करना ये आसान काम नहीं होता कि ड्राइव भी करें और आप सारी तवज्जो और ध्यान मेरी तरफ।

0: जब ही तो कहा है किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा। हारिस ने कहा ताबिशाई वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद गेटली में, वेल डन ब्रदर। ताबिर ने एक और जवाब दिया हमें, कहती है भाई इतने उतने कितने क्या ताबिश, देखो जितना फर्क यहाँ और वहां में होता है ना जितना फर्क यहाँ और वहां में बस उतना ही समझ लो। हाँ, और शहजाद ने हमें कुछ लिख के भेजा था, मैं याद नहीं रहा। शहजाद कहते हैं ताबिश भाई इतने काम के लिए स्पेसिफिक लेस के लिए है, क्या मतलब। और खालिद महमूद भाई ने हमें सॉन्ग लिखवाया मेरा दिल भी कितना पागल है, लेकिन ये सॉन्ग जो मैं आपको सुनवाने लगा हूँ ये भी मुझे किसी ने बताया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: बोलो बोलो बोलो, किसने बोला था ये गाना?

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Exactly, Janab, State Bank of India walon ko paigham apne pyaron ko India rakam pahunchayenge. ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं या इनकी मोबाइल ऐप के जरिए डाउनलोड कर लें योनो एसबीआई मोबाइल ऐप. यूके के जरिए आज का रेट है ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीस 125 रुपए 15 पैसे.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीस एंड सीज अप्लाई. Like a radio.
1: Right, जनाब, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछ लो तुम, मेरी जिंदगी तुम्हारी है. क्या सॉन्ग, क्या शायरी, क्या नगमे और क्या नगमे गाने वाले. छोटा मुंह और बड़ी बात साहिबो, चस आ गई एकदम से. पूरे लिस्बन में फिजा इतनी खुशगवार हो गई कि गाड़ी से उतर के नाचने लगे नसीर भट्टे. इसी गीत को हम आपकी तरफ से नाम करेंगे डॉक्टर अल्ताफ अलवी के, वो भी आपको सुन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच बाबर भाई. वालेकुम सलाम. जीते रहिए हमजा. नाश्ता कर लिया मेरे बच्चे ने? ताहिर सिद्दीक भाई लंदन में हैं. ताहिर भाई कहते हैं रहता ही, आपने लिखा है कि रहता नहीं इंसान तो होता नहीं गम भी. अच्छा, रहता नहीं इंसान तो होता नहीं गम भी. एक रोज जमीन ओढ़ के सो जाएंगे हम भी. ओए ओए ओए ओए ताहिर भाई, ना डराओ यार, ना डराओ. अच्छा भाई, एक और जिद्दी बच्चा है. एक तो आज गैर हाजिर है, एक दूसरा है अदनान. अदनान की जिद होती है कोई ना कोई सॉन्ग अगर इत्तेफाक से उसके मूड में उसके दिल में आ गया है तो वो मुझे लगाना पड़ेगा, वरना अगर उसको बस चले तो शुक्र है वो रॉयल जेल में है भाई. अगर यहाँ कहीं अरीब करीब किसी गली में होता भाई, देखिए मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ. आप जानते हैं मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे तमाम सुनने और चाहने वाले कि मेरा एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट के हिसाब से मैं अपने प्रोग्राम को मुरतब करता हूँ. आपको बताया इसमें कोई जोरा जोरी नहीं चलती भाई. नगमाना कंवल हमारी बहन सुन रही है, नॉर्थ वेस्ट की शायरा नगमाना कंवल. हाय. बड़े खूबसूरत तालाब और भीगे हुए और ठंडे ठंडे पानी में एक पौधा उगता है, उसे कहते हैं कंवल. कमल जी, आपके नाम करते हैं, ये गाना क्या याद करेंगे आप?
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: मैडम न्यू जहां

0: At the Golga Piada Pani.
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
3: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं। बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें। पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें।
4: A Leica Radio Classic plays now.

0: वाह भाई वाह, खजूरी जी झूम रही हैं, आपने हमारे रिडल का बड़ा तवील जवाब देती हैं, हमेशा बड़ी सीरियस। अरे खजूरी जी, मेरे रिडल के लिए आप इतना सीरियस ना हुआ करें। ये रिडल कोई आपकी जानकारी का इम्तिहान या एग्जाम नहीं होता, ये तो बस ऐसी छेड़छाड़ होती है, बस इतने उतने जितने यहाँ वहाँ और जहाँ और कहाँ, सबके एक ही माने एक ही मतलब होते हैं। लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ एक सही जवाब मिला है, यकीन कीजिए। बरी से अमन ने हमें सही जवाब दिया है ताबिज भाई। इतने उतने कितने होते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। वेल डन अमन। और एक सॉन्ग हमें लिख के भेजा है जी, इधर उधर जिधर किधर। क्या भाई फरीद भाई, क्यों आप मुझे पहेलियों में डाल रहे हैं? फिल्म का नाम लिख के भेजें और देखता हूँ, तलाश करता हूँ सॉन्ग को। अयूबी भाई आज गैर हाजिर है भाई, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। बाबू परवेज भाई हमारे साथ होते हैं रोजडेल में, गजाला जी भी हमारे साथ हैं, और यासिर नाराज रहता है मुझसे न जाने क्यों। वल्ली भाई हमारे साथ हैं, वल्ली भाई बहुत शुक्रिया। चीमा भाई, अबरार भाई, हमजा अबरार भाई, हाँ जी अबरार भाई।
1: This is Mika Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
0: और फिल्म का नाम है फूल। हाय हाय, वो भी गुलाब का। आई डोंट नो फिल्म का नाम फूल है। कुमार सानू और साधना सरगम का ये गाना लेके जा रहा है 12 बजे की खबरों की जान। वापस आते हैं ना, मैं हूं ना आपके साथ अगले पूरे घंटे, मेरे लंच टाइम के साथ साथ और आपके सुबह के नाश्ते के साथ साथ। रॉबिन भाई,

0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बुध की दोपहर हो गई, लंच टाइम भी है किसी का और किसी का मॉर्निंग टाइम है अंडा पराठा। ये आलू की भुजिया खा रहे हैं गुलाम अली भाई, और कोई ठंडी कोल्ड कॉफी पी रहा है। यार कमाल हो गया, कितने अंग्रेज बन गए लोग। कितने दिनों के बाद मिले हो। ये प्रोग्राम के तीसरे हिस्से का तीसरा सॉन्ग था इसकी शुरुआत का, और ये सॉन्ग हमें भेजा था बरी से अमन तुमने, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया बानो बहन ने। बानो बहन बोल्टन में होती है, क्या कहती है, सॉन्ग लगा रहे हो भाई, कितने सॉन्ग लगाओगे साबिश भाई। अरे मैंने तो पूछा यही है बानो बहन कि इतने और उतने कितने होते हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है
3: Leica Radio.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: द बॉय इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
10: Sunshine, skyscrapers and souks
11: for less than you think. This is Affordable Dubai from South Old Travel. We've secured special packages with our top

मुंबई के रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से प्रोग्राम बज में ताबिश का तीसरा हिस्सा, और तीसरे हिस्से में हमेशा एक गजल हुआ करती है। इस हफ्ते की दूसरी गजल, इसमें भी लफ्ज जुड़ा है जितना इतना।

0: क्या हम भी जिसको छुपा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कैफी आजमी की गजल और जगजीत सिंह की आवाज। कहते हैं कि कोई और समझे या ना समझे फर्क, कोई और समझे या ना समझे फर्क, फर्क नहीं पड़ता। कोई और समझे ना समझे भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पर उम्मीद हो, जिस पर उम्मीद हो वो भी ना समझे, जिस पर उम्मीद हो अगर वो भी ना समझे तो बहुत दर्द होता है। वेंसडे आफ्टरनून, बुध की दोपहर हो गई और हमारा लंच टाइम हो गया। अगर आपकी सुबह है तो आपसे कहेंगे सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उसमें जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू योगेश भाई। क्या खा रहे हैं आप लंच में आज? और ताबीर हमारे साथ हैं मुस्तकिल, कहती हैं बहुत शुक्रिया। और आज की रिडल जो है समझ नहीं आई कि आसान थी कि मुश्किल थी, लेकिन बहरहाल जो गजल आपने प्ले की, इस गजल का कोई जवाब नहीं। जी हाँ खालिद भाई, आपको भी बहुत अच्छी लगी और शहजाद तुमको भी। तमाम साथियों के लिए आज की हमारी ये गजल थी जगजीत सिंह की।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी रेट यूएस डॉलर 1.32 और इंडियन रुपीज में 126.50, पाकिस्तानी रुपीज में 367.06, बांग्लादेशी टका 164.06, श्रीलंकन रुपीज 438.49 और अफगानी रुपीज 86.05।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: और सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 101.56 यानी 101.56 पर ग्राम। पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज है 37,200 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: Like a radio. Right, जनाब प्रोग्राम के तीसरे में आप जानते हैं कि आपको एक लाइव रीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमें आपको बताना होती है। आपको बता दें कि पंजाबी किंग स्पीकर, जबरदस्त पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली, जी हाँ जी, कल उनकी आमद हो गई एयरपोर्ट पे, बड़ा इस्तकबाल किया उनके दोस्तों ने। फ्राइडे 16 अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्ट्रग एंड संडे 18 अक्टूबर को ICC बर्मिंघम में तीनों जगहों पे शो करने के लिए आपके लिए आ रहे हैं। इनके लिए टिकट ले लें फौरन। और उसके बाद आएंगी कविता कृष्णमूर्ति, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय संतान इवेंट एंड दिवाली स्पेशल। Tickets from the Venue Box Office, exclusive radio partner LIKA Radio Network.
2: Ye hai.
3: LIKA Radio.
4: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
7: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822 दैट इज 0161250822 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
1: Punjabi Hit of the Hour with Tabish.
0: Right, Janabu, welcome back and...
9: Tres, cuatro.
0: And my love story is kitna? Pehli se related, Punjabi mein kitna ko kinna kehte hai na? Kya khubsurat mujhe Punjabi ye, ghazal nama. गीत फरमाइश किया मुझे नाम याद नहीं आ रहा भाई बहुत सारे मैसेज होते हैं भूल जाता हूँ मैं बहरहाल जिसने भी ये मुझे याद दिलाया था उसका नाम हुआ

0: हाय, दिल कहाँ मुड़ता है और कहाँ समझाया जाता है दिल को। दिल करे देखता रवा। फरीद भाई कहते हैं कराची से, ताबिश भाई मेरे मुंह से छीना ये गाना आपने यार। रियली शहजाद भाई आपका नाम हुआ, हमजा तुम्हारे नाम, और खालिद महमूद भाई आपके नाम, जमशेद चौधरी भाई कितना सोना ऊपर वाले ने मेरे लिसनर्स को बनाया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जनाब स्टेट बैंक ऑफ वालों की तरफ से पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं, इनकी किसी ब्रांच में जाएं या ऑनलाइन। ब्रिटिश पाउंड के बदले में आज का रेट दे रहे हैं इंडियन रुपीज 125 रुपए 15 पैसे।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। लाइक अ रेडियो।
0: और बहुत से साथियों ने हमें लिखा, ताबिश भाई दिल खुश कर दिया। रियली बुध की दोपहर के हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ियों में 12:40, पाकिस्तान में 3:40, भारत में 4:10 और न्यूयॉर्क में रॉबिन भाई आपके यहाँ 8:20 बाकी हैं अभी, और मेरे भी यहाँ आपके साथ रहने का जो वक्त है वो 20 मिनट बाकी है अभी। आज के सभी गीत नाम करेंगे हम। कजोरी जी आपके, आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद करते हैं कि लैला आपकी भी तबीयत कुछ बेहतर होगी कल से बेहतर। कुछ हमारे साथियों दोस्तों की तबीयत नासाज़ है, मौसम के असरात है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। अदनान अदनान का मुंह बना हुआ है। एजाज भाई कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शब्बीर पटेल भाई, लंच टाइम आपका हुआ कि नहीं हुआ? नायाब, उम्मीद करते कि नायाब अभी तक आप हमें सुन रही होंगी। बानो बहन आपका बहुत शुक्रिया। नदीम असर बाजवा हमारे साथ है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जी, शिराज भाई भी आज खामोश हैं, साजिदा सुमरो भी जरा खामोश खामोश सी हैं, और अयूबी भाई तो आज है ही नहीं भाई, लीम में हमारे साथ होती हैं रोजाना। मोइना जी और उमर हयात मलिक, मलिक साहब कहाँ थे आप? शाहिद भाई, रिजवान खान नेल्सन में, खालिद लंगड़ियाल भाई आपका शुक्रिया, राजा भाई, राजा अतीक, इमरान राणा और नवाजिश, हाय नवाजिश आपकी साहब। अच्छा भाई, एक वो पाकिस्तानी सॉन्ग मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अब से पहले यहाँ, मेरे ख्याल है कि इससे पहले यहाँ प्ले नहीं हुआ था, आप सुनिएगा जरा। अदाकार नदीम की आवाज है और
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: नहीं भाई नहीं, ये स्किप कर गया गाना, ये तो नसीम बेगम का गाना आ गया भाई। ताबिश रेडल के चक्कर में ताबिश के बच्चे। वैसे मैं ढूंढूंगा वो गाना जो मैंने निकाल के रखा था, कैसे हो गया ये।

0: मुझे भी कुछ कुछ याद है कि मुझे जाना है घर। जनाब इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई। इतने उतने कितने होते हैं ये आज हमने आपसे बातों बातों में पूछा था, और इत्तेफाक से इन्हीं लफ्जों से जुड़े हमने नगमात आपके लिए पेश किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही था, ऐसे जैसे तैसे, इतने उतने जवाब था जितने। हाँ जी, इतने उतने कितने होते हैं जितने होते हैं। फनी बात का फनी जवाब, फनी सवाल का फनी जवाब। तो शुक्रिया तमाम साथियों दोस्तों का, बेहतर शुक्रिया आप लोगों ने मेरा साथ निभाया। मेरे बाद यहाँ पे रूबीना खान का आप साथ निभाएंगे। मेरी आपकी मुलाकात कल जुमेरात, जी हाँ भरी मुराद आपसे होगी मुलाकात कल, वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है। रोबिन भाई शुक्रिया आपका, आप लेट हुए और चलते चलते फिरते फिरते शॉपिंग करते करते कुछ लोग हमें सुनते रहे गाड़ी में, गाड़ी से उतरते रहे और चढ़ते रहे गाड़ी में, तो फिर इस तरह तो होता है भाई। कहते हैं कि साहब आपकी मोहब्बत की तारीफ ना किया करो। राहल जी ने हमें वासिफ अली वासिफ की कहावत लिख के भेजी है कि याद रखो कि आपकी मोहब्बत की तारीफ ना किया करो बल्कि महबूब की तारीफ किया करो, और अगर महबूब ना हो अगर महबूब ना हो तो फिर मोहब्बत की बात छोड़ दिया करो। अरे वाह वाह, क्या तड़का लगाया आपने जाते जाते। अच्छा जी, जो गीत मेरे से स्लिप कर गया था, नसीम बेगम की आवाज का अचानक ये जादू चल गया था, वो गीत जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो गीत सुनिए इसी दावे के साथ कि ये गीत आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हैव अ वंडरफुल डे एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह, खुदा पामान। कहते हैं कि दुनिया में वही खुशकिस्मत हैं
1: दुनिया में वही

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: 14th of October 2026 aur aaj hai वेंसडे यस बुध का रोज मैगजीन शो के साथ रुबीना खान अपने तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से ऑफिशियली दिल से खुशामदीद। हमारा और आपका साथ पहले दो गानों के साथ ही शुरू हो चुका। बिल्कुल जी, शुरू से लेकर आखिर तक बहुत जबरदस्ती प्लेलिस्ट कोशिश की जाती है, भरपूर कहना बहुत मुश्किल लगता है, तो मुकम्मल तौर पर पूरी हार्ड वर्किंग जितनी भी किसी में कैपेसिटी हो सकती है कोशिश की जाती है कि आपके लिए बहुत ही अच्छे एंटरटेनिंग सॉन्ग्स और वो सॉन्ग जो कुछ अरसे से नहीं सुने उनको हम आपके लिए प्ले करें। तो आज भी ऐसी ही लिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जरूर इंजॉय करेंगे आज के गीतों को। सजदा फिल्म से पहला गीत हमने आपको सुनवाया ऋचा शर्मा और राहत फतेह अली खान की आवाज में, माय नेम इज खान ये फिल्म का नाम और 2010 की फिल्म थी ये वो फिल्म थी जिसने फिल्मों में बिल्कुल एक नया टर्न लिया था। सो ऑब्वियसली खान तो टर्न लेते ही हैं। एनीवेज, और दूसरा गीत बहुत ही जबरदस्त, लाल इश्क मलाल इश्क अरिजीत सिंह की आवाज में रामलीला, ये भी एक ब्यूटीफुल फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था जो आपने सुना हमारे साथ। और इस फिल्म को ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। इंतजार कीजिए, साथ रहिए। कौन से गीत हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी कोट है, कौन सा सवाल है? सवाल इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको पहले ही बता दूं, आसान है, आंख बंद करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। जी, आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, इतना आसान मैंने सोचा, मैं कहा आप लोगों के जहन पे ज्यादा बोझ ना ही पड़े तो अच्छा है।
0: The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
4: Get it in, but it might be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
6: बात क्या है बंटू?
7: अरे बोलो काक भसुंडी।
8: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
9: अरे क्या हुआ? क्या हुआ?
10: तो क्या?
8: और लाइफ बन गई हेवन।
11: भाभी डायन है।
8: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
12: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
13: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज October 16.
12: आप सिर्फ मजे लो।
14: New at Pepe's.
15: Pepe's Melts.
14: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
15: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
14: Chicken or paneer, barbecue or salsa, your melt, your way.
15: New melts, only at Pepe's.
16: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
17: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers, fix leaking taps or toilets, using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
18: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
3: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: Mocha Radio.
1: अभी जो गीत आपने सुना है यासिर देसाई की आवाज में है, फिल्म का नाम जरा मुश्किल सा है, औखा सा है, परम मनु शायद ये अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है, 2018 की फिल्म थी। और मलिका आपने इस गीत को सुना तो आपको बहुत अच्छा लगा, कहती है आपके सच अ हीलिंग सॉन्ग। कुछ आवाजें होती हैं और कुछ ट्यून्स होती हैं जो आपको शांत करती हैं। कितना अच्छा लफ्ज है, बाज़ लफ्ज हिंदी के बहुत अच्छे हैं, बाज़ उर्दू के बहुत अच्छे हैं, पंजाबी को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, सारी जुबानें, गुजराती, अब वो बातें, वो जुबानें जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई खूबसूरती नहीं है, वो भी बहुत प्यारी होंगी लेकिन हमें नहीं आती, क्या करें। लेकिन हर जुबान अपने अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स लिए होती है और विदाउट एक्सप्रेशन आप कैसे रह सकते हैं इस दुनिया में। तो अच्छा किया आपने जो लिखा कि ये हीलिंग सॉन्ग आपको लगा, मलिका आपके नाम कर देती हैं, तारिक एवान आपका मैसेज है और आपने वो तस्वीर खींची है जो कि रेडियो पर की हमारे आपके गाड़ी के सेट पर आ रही होगी। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह दिखता है जब रेडियो आता है। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और फरजाना आपने वॉरिंगटन से मैसेज किया है, अस्सलाम और अलैकुम, दो अलग अलग दिल आपने भेजे हैं, एक ही काफी है भाई, दो नहीं चाहिए। सुफियान आपका मैसेज है, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अच्छे से हमें इमोजीज भेजी और हमें मैसेज किया, शुक्रिया। करंसी एक्सचेंज रेट की तरफ लेके चलते हैं, वापिस आते हैं, बस आपने कहीं नहीं जाना, कानों को रेडियो की तरफ और हाथ जो है बेशक काम करते रहे, दिमाग भी करता रहे लेकिन कान आपके रेडियो की तरफ जरूर होने चाहिए।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So, currency exchange rate aapko bata deti hai. US dollar aapko milenge 1.32, Indian 126.
0: Formerly known as Asian Sound Radio. Laika Radio. A Laika Radio classic.

0: मंगेशकर की आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरे हमदर्द मेरे दोस्त 1968 की फिल्म थी और अब
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: राधा पुडवाल और हरिहरन की आवाजें थी और इतिहास फिल्म का नाम 90s throwback.
1: The Magazine Show with Robina Khan.
0: So, जी गीत तो हो गए, काफी सारे हो गए. मेरा ख्याल है कि आप काफी मुतमईन होंगे. एक के बाद एक गीत मैंने आपको बहुत अच्छा कोशिश की के आपके लिए प्ले करूं. और इसका जो प्रूफ है वो ये है, शिराज आपका मैसेज है और आपने वॉइस नोट किया है और आपने कहा कि बहुत ही मजा आया अभी जो गीत प्ले हुआ था. सो मेरा ख्याल है वो इससे पहले वाला गीत था आपको राज फिल्म का. इतना मैं चाहूँ गीत अच्छा लगा और आपने इसको इंजॉय किया. यकीनन ऐसा होता है जब आप कोई गीत सुनते हैं आपको अच्छा लगता है आप उसको फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं. और अगर आप गाड़ी में है, पता नहीं क्यों मैं इसी अंदाज से सोच रही हूँ कि ज्यादातर लोग इस तरह से प्रोग्राम सुनते हैं. ऑब्वियसली किचन में और लाउंज में या कहीं पर भी आप सुन सकते हैं. इसमें कोई कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, बल्कि जहां भी सुने साथ बस रहे हमारे और कुछ नहीं चाहिए. सो अभी एक सवाल है, एक सवाल ये है, ज्यादातर आसान सवाल कोशिश करती हूँ पूछे लेकिन ये इंटरेस्टिंग है. हम आप जहां भी रहते हैं, हमारे घर वाले या हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार, कुछ लोग बहुत नसीहत करते हैं, ठीक है ना. तो बाज लोग बहुत नसीहत करते हैं, बात बात पे नसीहत करते हैं. तो आप ये बताइए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत नसीहत करने वाले हैं, बहुत बताते हैं ऐसा कर लो. और नसीहत किस चीज़ के बारे में होती है, यानी अगर आप थोड़े से बीमार हो गए तो कोई बगैर कोई टोटका जाए आप बताए आपको जाने नहीं देगा, ज़रूर कुछ ना कुछ बताना ज़रूर है. या हम लोगों की कन्वर्सेशन ऐसे ही चलती है कि अच्छा अगर बीमार हैं तो आपको टोटका बताया जाएगा, अगर आपको वैसे कोई मसला हो रहा है तो भी आपको उसकी कोई तजवीज कोई वजह बता आपको सजेस्ट किया जाएगा, ऐसा कर ले सजेस्ट किया जाएगा. आई मीन कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, बिजनेस में इवन आपको मसले हो रहे हो उनका कोई ताल्लुक बिजनेस से ना भी हो लेकिन वो आपको जरूर कोई ना कोई मशवरा दे देंगे. तो नसीहत करने वाले, एडवाइस करने वाले आपके इर्द गिर्द कितने हैं. बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो बच जाती हूँ, मैं कहती हूँ उनको कोई बात ऐसी बताई जहां से इनकी पटारी में बहुत सारे अभी आ जानी है एडवाइसेस, तो इसलिए बात ही ना बताओ क्योंकि अगली बात 10 मिनट लंबी हो जानी है. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में आपके दोस्तों में बास लोग बहुत ही सीरियस मशवरे देते हैं आपको, जरूर बताइएगा, चाहे वॉइस नोट के जरिए बताएं चाहे लिखकर बताएं. लेकिन जरा जानना चाहती हूँ कि इर्द गिर्द चलता क्या है, क्या चल रहा है. और इसी नोट पर कल मैं सोच रही थी पाकिस्तानी गीतों को थोड़ा सा मैं देखती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ कौन कौन से गीत जो हैं, लेकिन एक आइकॉनिक सॉन्ग जो है मैंने सोचा कि आज प्ले लिस्ट में होना ही चाहिए और इसको आप कभी भी सुने आपको बुरा लग ही नहीं सकता. सुने और बताए मुझे कैसा लगा.
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Beautiful Madam Noor Jahan aur unki bahut hi surili awaaz aur phir Punjabi song Gana.

0: नक्श अजीज की आवाज है इस वक्त बधाई दो फिल्म से, बधाई दो गीत का नाम भी।
1: The Magazine Show with Robina Khan.
0: और बात कुछ यूं है कि मैगजीन शो में आप मिक्स म्यूजिक सुनते हैं। पहला गीत जो आपको हमने सुनवाया था वो दीवाना फिल्म से था और कुमार शानू और सैयद नसीर कम की आवाजें। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा नाम, ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए और इस गीत को बहुत से लोगों ने पसंद भी किया और फौरी के फौरी बहुत से मैसेजेस भी आए। आज हमने आपसे सवाल यह किया है कि क्या आपके घर में आपके इर्द गिर्द दोस्तों में कुछ ऐसे लोग शामिल है जो बहुत नसीहत करती हैं, हर बात पे नसीहत करते हैं, आपको अच्छा लगता है या आपको पसंद नहीं आता? खाने पीने का मामला हो, जिम जाने का मसला हो, कोई भी बात हो, आपको लोग नसीहत करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत नसीहत करने वाले लोग हैं या नहीं है, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है? लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो तो यही बताते हैं कि आपको बहुत नसीहतें मिलती हैं एवरीडे लाइफ में। सो उनको शामिल करूंगी प्रोग्राम में। आप भी अगर मैसेज करके शामिल होना चाहते हैं, हमारे आज के क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या आपके घर में आपके दोस्तों के सर्कल में बहुत लोग ऐसे हैं जो नसीहत करते हैं बात बात पे या नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है? तो जवाब देने के लिए 07703 40 30 20 ये हमारे स्टूडियोज का व्हाट्सएप नंबर है। सो आई रिपीट, 07703 40 30 20। टेस्टी ट्रैक
1: ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Zesty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: बात क्या है बंटू?
4: अरे बोलो काक भसुंडी।
5: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
6: अरे, नहीं, क्या हुआ?
7: क्या हुआ?

0: Now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
1: New at Pepe's.
2: Pepe's Melts.
1: Flame grilled flavour, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavour packed toppings in toasted focaccia.
2: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavour. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
1: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
2: New melts, only at Pepe's.
3: Weddings, celebrations, corporate events. Lagas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: सनशाइन स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
5: फॉर लेस देन यू थिंक दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम साउथ ओल्ड ट्रैवल वी हैव सिक्योर्ड स्पेशल पैकेजेस विद आवर टॉप होटल पार्टनर्स
4: फ्लाइंग डायरेक्ट विद एमिरेट्स सो यू कैन एंजॉय 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry! Availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Did you know? Kavita Krishnamurti has performed at London's Royal Albert Hall and New York's Lincoln Center, bringing her remarkable voice to international audiences.
4: Kavita Krishnamurti, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at box office. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
6: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
7: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ऑन 963 AM एंड 1377 AM। दिस इज लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: Currency exchange rate आपको बता दें, £1 के exchange में आपको US dollar मिलेंगे 1.32 US dollars, Indian rupees 126.50, Pakistani rupees 367.06, Bangladeshi takas 164.06, Sri Lankan rupees 438.49, Afghani 86.05 Afghani.
9: Leica Radio.
7: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. A Leica Radio Classic. Plays now.
8: फिल्म का नाम है चेचो, 1976 की फिल्म। नगमाना आपने ज्वाइन किया है आपके लिए गीत और हमारे सुनने वाले सभी के लिए।

0: क्लासिकल सॉन्ग है ना लेकिन नगवाना आप काफी रदीफ जोड़ने से बाज नहीं आई हैं। तू जो मेरे रंग में भंग में ला ले तो दोस्ती हो जाए सफल। इतना सीरियस नगमा जा रहा था।
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान।
0: सो जी, आज की खबर पर जो नज़र मेरी पड़ी है और जो जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ वो दो खबरें हैं। एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि इंसान कितना भी आगे चला जाए या कुछ भी कर ले उसके दिल से इंसानी हमदर्दी जाती नहीं। इस खबर का जो है ना मेन वजह जो है बताने की वो ये है। अब ये खबर अमेरिका की है। रियासत मिशिगन में चंद स्काई डाइवर्स जहाज से छलांग लगाने की तैयारी कर रहे थे। आपको पता है स्काई डाइविंग लोग करते हैं जिनको पसंद होती है या जिनमें हिम्मत होती है, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हिम्मत किसी में नहीं होती, करनी पड़ती है। यही कहते हैं ना कि बहादुर कोई नहीं होता, बहादुरी दिखाने के लिए आपको हौसला खुद ही पैदा करना पड़ता है। सो बहरहाल खबर की तरफ आते हैं कि कुछ लोग स्काई डाइविंग की तैयारी कर रहे थे जहाज में। आपको पता ना वो एक मोमेंट होता है जब इंसान पर्सन अपने आप की सारी जो आपकी हिम्मत है उसको एक जगह कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जबकि वो स्काई डाइविंग रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर एक छोटा सा तैयारा किसी फील्ड में गिरा है और वो वहां पर लोग मतलब हादसा हुआ है। तो वो लोग जो स्काई डाइविंग कर रहे थे वो बजाय इसके कि जिस जगह उन्होंने उतरना था उन्होंने अपने जहाज को हादसे की तरफ मोड़ दिया और उधर जाके स्काई डाइविंग की। और उनमें एक मेडिसिन से भी उसका ताल्लुक था एक बंदे का। तो वहां पर जहां पर हादसा था और चार लोग सवार थे उस तैयारे में, छोटा सा जैसे होता है हेलीकॉप्टर, तो वहां पर उसने उन चारों अफराद की जान भी बच गई क्योंकि वो मेडिसिन से उनका ताल्लुक था। तो ये ह्यूमैनिटी की बात है और ये बात है कि इंसान, इसलिए इस इंसान को इंसान कहते हैं, जानवर नहीं कहते, कि इंसान के दिल में हमदर्दी होती है दूसरों की। अब एक बड़ी अजीब और बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग बाज़ूकात खत लिखते हैं या कोई नोट बनाते हैं अपनी डायरीज में। खत का तो जमाना वाकई बिल्कुल नहीं रह गया है लेकिन नोट्स तो हम अभी भी बनाते हैं। अभी भी हमें खासतौर पर जिनका जो क्रिएटिव राइटिंग के शोबे से हैं तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कोई ना कोई। तो एक लड़की ने तकरीबन 44 इयर्स पहले अपने घर में जब वो खुद 10 साल की थी तो उसने एक खत लिखा और लिखा कि ये खत उसके नाम है जिसको मिल जाए। ये भी कितना अच्छा है, देखें बच्चे कितने सच्चे होते हैं। उन्होंने किसी के खास नाम नहीं किया। अब उस खत को, वो खत आफ्टर 44 इयर्स नए जो मालिक थे, ओनर थे, उनको मिला। कहीं वो छुपा हुआ था इस तरीके से कि पता ही नहीं चला इतने अरसे में। तो सोशल मीडिया पर डाला उस खत को और उसमें उसने लड़की ने अपना नाम पता भी लिखा हुआ था और उसको ट्रेस कर लिया गया और वो उसको मतलब सामने आ गई। वो आजकल का ये मैं बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया जो है कई चीज़ों में इतना पावरफुल है कि आपके मिस्ट्रीज भी हल कर लेता है। लेकिन इसमें चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की सामने आई और उसने कहा ये मैंने खत लिखा है। कभी आप सोचेंगे कि कोई ऐसा खत लिखें, कोई ऐसा नोट छोड़ जाएं। इसी तरह की एक किताब, एक और भी कहानी थी ना या एक खबर थी जिसमें एक लड़की बोतल में एक चिट डाल के पानी में बहा देती है। वो पता नहीं कहाँ बहती बहती बोतल जो है वो कहीं पहुंचती है और वहां से वो उसका मैसेज जो है मिलता है। सो एनीवेज ये थी दो खबरें जो इंटरेस्टिंग थी इस लिहाज से आपके लिए शामिल की प्रोग्राम में।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: रूना लैला की आवाज, हम दोनों, फिल्म का नाम 1966 की फिल्म, और आप सबके लिए

0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: आपके नाम मैं शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि वाकई में आप लोग जब किसी सॉन्ग के जवाब में मुझे मैसेज करते हैं तो इट मीन्स अ लॉट. लवली क्लासिक सॉन्ग लिखा है आफ्टर लॉन्ग टाइम हर्ड थैंक्स, और ये मैसेज है पूनम, आपने मैसेज किया, शुक्रिया बहुत बहुत. और आपको जो तू जो मेरे सुर से सुर में ला ले, ये गीत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैंने आपके लिए प्ले किया. जमशेद आपने मैसेज किया है और आपको न्यूज़ अच्छी लगी, आपका तो बहुत ही शुक्रिया, बल्कि चार पांच शुक्रिया इकट्ठे मिला लें क्योंकि खबरों पे लोग तवज्जो देते नहीं है और इसके बैकग्राउंड को नहीं जानते कि खबरें, और खासतौर पे ऐसी खबरें कहाँ आसानी से मिलती नहीं है, बड़ी लबनी पहनती है ने, तो बहुत ही गलत पंजाबी बोलिए, बहुत लबनी पड़ती है. तो एनीवेज आपका शुक्रिया, और जैसा मैंने कहा पांच छह कम है दस कर लें, तादाद बढ़ा देती हूँ शुक्रिया की. तारिकवान आपने लिखा है कि आप रूना लैला के इस गाने को सारा दिन सुन सकते हैं. सुफियान आपने भी पर सॉन्ग लिखा है, और नकमाना आप के नाम इस गीत को करते हैं. शिराज आपके मैसेजेस जो है ना रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन वो जबरदस्त हैं, इतने अच्छे हैं कि अब मैं आपकी इजाजत के बगैर उसका वॉइस नोट नहीं प्ले करना चाहती, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप कुछ बातों को खुफिया मुखफी रखना चाहती हूँ. देखिये मुखफी कितना अच्छा ना. तो एनीवेज आपके उनको मैं बताऊंगी जरूर जो जो आपके मैसेज मिल रहे हैं कि क्या आप के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत नसीहत करते हैं, और चलिए इसमें ऐड ये कर लीजिए कि कौन सी नसीहत है जो आप अब मिस करते हैं. शिराज आपके ही सवाल आपके ही जवाब से मैंने इसमें एक एडिशनल पार्ट बी कह ले डाल दिया है कि एक तो ये कि कौन लोग हैं जो इर्द गिर्द बहुत नसीहत करते हैं, हर तरह की नसीहत करते हैं चाहे उनका शोभा हो ना हो, और या फिर ये कि आप किस नसीहतों को मिस करते हैं.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: 24 carat aur 1 gram gold ka aaj rate hai 101.56. So it's 101 pound and 56 pence.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio. This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
2: Leica Radio.
1: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की अपडेट यह है कि टाइटल इसका है लाइका मैन, यानी लाइका के प्रेजेंटर्स अनफिल्टर्ड, और उन्होंने बैठ के बड़ी जबरदस्त गपशप की है. और ये पॉडकास्ट वॉज होस्टेड बाय सैंडी शॉ, और फीचरिंग राज बदान इसमें शामिल है, दीप राजा एंड विश पटनागर. क्या लवली आप लोगों ने टॉक की है, और रेडियो प्रेजेंटिंग जो है वो क्या है, कितना इसमें रियली शुड इन्फ्लुएंस रियली गेट अ शॉट बिहाइंड द माइक, और या ये कि लेडीज ज्यादा जल्दी या ज्यादा पावरफुली प्रेजेंटिंग में अब क्या ना किए जा रहे हैं कि जल्दी इन हो जाती हैं. कैसा लगता है एज अ प्रेजेंटर मेल को, इस बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं मेल प्रेजेंटर, तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर. मेल एंड फीमेल दोनों देखें ताकि अंदाजा हो कि वो क्या सोचते हैं.
0: Leica Extra is here. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: Shine skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected. affected.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties.
10: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
12: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
13: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
12: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
13: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
12: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
13: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
14: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah, love you too.
15: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Hi, it's Ankit Tiwari. Keep listening to Laika Radio.
17: सना से लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो
1: So, आपको बता दें ट्रेवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग साउथ हॉल ट्रेवल आपको एक ऑफर कर रहा है अगर आप जाना चाहते हैं दुबई तो आपको टिकट मिलेगा 629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स के लिए और ये ऑफर है दुबई के लिए और सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स होंगे ट्रेवल बाय 10th ऑफ दिसंबर सो इसके साथ अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए southhalltravel.co.uk या कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-843-4444
0: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southhalltravel.co.uk 90s throwback plays now.
2: Like a radio.

0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: So, जी अभिजीत सिंह के अभिजीत की आवाज में आपने ये गीत सुना है और इस गीत को प्ले करके मैं बहुत खुश हूँ दो रीजन से. एक तो इसके जवाब में इस गीत को सुन के बहुत से मजे के आप लोगों के मैसेजेस आए हैं. ठीक है ना, ऐसे ही मैसेज आने चाहिए थे. लेकिन जबरदस्त सॉन्ग था, आपने इंजॉय किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है. और बात यह है कि खुशी की दूसरी वजह क्या है, वो ये है कि 90s के सॉन्ग मजाल है कोई जो 7 मिनट से कम पर आ जाए. ये गीत बड़ा जबरदस्त था, भरपूर था, गुड शायरी, एवरीथिंग फैंटास्टिक, लेकिन 3-4 मिनट के बीच में था. ये कभी नहीं होता कि 90s के सॉन्ग आप प्ले करें, आप आराम से चाय वाय बना कर ले आए, चाय आधी पी भी ले, लेकिन अभी भी सॉन्ग चल रहा है. लेकिन यही शायद इसकी खूबसूरती भी है कि अच्छी तरह खुल खुला के वो जो है ना अपने जज्बात को बयान करते हैं 90s के सॉन्ग. सो ये 3-4 मिनट का सॉन्ग था, कितना खूबसूरत था. नगवाना, आपका मैसेज और जो आपने लिखा है वो ठीक है, लेकिन देखें बहुत लोग जो हैं, कल मैंने एक्चुअली छोटा सा एक टिकटॉक देखा, उसमें शेर था और वो मैं बिल्कुल वो उस तरह नहीं बताऊंगी. वो एक शायर थे और काफी बुजुर्ग थे. वो कह रहे थे कि मैं इस तरह कर करके ना काफी उन्होंने बातें की और उसके बाद कहा कि अब आप लोगों में से कोई है जो ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं आप अपने बारे में महफिल में बता सकते हैं कि नहीं. भाई इसमें कोई इतनी यानी बहादुरी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है. इतनी चीजों को आप अपनी खामियों को बता रहे हैं सरे महफिल, तो कोई सही भी नहीं है. लेकिन कम ही लगते हैं कि ऐसे कोई कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए. आई थिंक सो आपके मैसेजेस जो है ना वो मैं शामिल करूंगी. सो वरी नहीं करना आपने.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो जी इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा 126.50 एंड आपको ख्वाह एक्सचेंज करना हो मनी ट्रांसफर करने से पहले ब्रांच में जाके ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप मनी ट्रांसफर करेंगे. कंपेटिटिव रेट्स मिलेंगे. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online, enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
4: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
5: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner. Leica Radio Network.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
7: Fancy winning something tasty on the side?
8: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
7: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
8: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
7: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
0: The biggest Asian hits in Greater London and now Greater Manchester. This is your Leica Radio. Leica Radio.
1: Alka Yagni Kumar Shanu ki awazein Karamat film se 2003 ki film hai.

0: अच्छी हाँ लाइका रेडियो। पहले तो गीत श्रेया घोषाल की आवाज में जब वे मेट फिल्म से, ये इश्क हाय, और उसके बाद भी आप सुन रहे थे वादा रहा, इसमें भी फीमेल वॉइस थी आपकी जानी पहचानी श्रेया घोषाल एंड अर्नाब चक्रवर्ती की। खाकी फिल्म 2004 की फिल्म। सजी प्रोग्राम के थर्ड एंड फाइनल आवर में दो गीत तो हो चुके हैं, अभी तीसरे गीत की तरफ मैं आपको लेके चल रही हूँ, लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं और जो हमारे सवाल का जवाब है उसको जरूर शामिल करेंगे, और उसके साथ साथ आज कोट ऑफ द डे एट 3:30।
1: The Magazine Show.

0: बिल्कुल सही जी, बेहद खूबसूरत गीत है, आप सब भी इससे सहमत है। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज है, मेरे हमदम फिल्म 1970 की फिल्म। जिन्होंने गाया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने प्ले किया है, उन सबको क्रेडिट जाता है, और जिन्होंने सुना है।
1: Quote of the day with Rabina Khan.
0: जी आज की कोट आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बेहद खूबसूरत गीत के एक तरह से जादू सा हो जाता है ना, जब कोई गाना ऐसा होता है वो आपको पूरा मुकम्मल गिरफ्त में ले लेता है, ये उसी तरह का एक गीत था। मुझे खुशी है कि आप सभी को ने इसको एंजॉय किया होगा। सो कोट की तरफ चलेंगे। दूसरों को जानना इल्म है, खुद को जानना रियल इल्म है या दानाई है। अगर इंग्लिश में इसको करें कि नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, Knowing yourself is true wisdom. ये कोट है लाउजे कदीम चीन के एक बहुत ही बड़े फलसफी थे, जिनकी बातें अमूमन जिंदगी से रिलेट करती हुई नजर आती हैं। और अभी जो ये कॉल है, जो कोट है, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करूंगी, एक्सप्लेनेशन करूंगी, क्योंकि फिर जरा ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती है, खुद मुझे बताते हुए भी ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है, और इसी उम्मीद पर कि आपको भी आएगी। तो ये कॉल कहता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने में गुजार देते हैं। हम इनके बिहेवियर्स या रवैयों का तजिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनकी गलतियां तलाश करते हैं, उनके फैसलों पर राय कायम करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा ना कि हम लोग और हमारे घरों में होता है, जी फलाने क्या गलत फैसला किया, शादी का फैसला गलत था, बिजनेस का फैसला गलत था, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने का फैसला गलत था। हम दूसरों के फैसलों को बहुत जज करते हैं, लेकिन अपनी जात को समझने पे उतना वक्त नहीं लगाते जितना हम दूसरों पर अपना वक्त सर्व करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है? कभी हमने सोचा है कि हमारी जो आते हैं उसकी रीजन क्या है, या हम किन खास मौकों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किन खौफ या डर की वजह से फैसले करते हैं? कुछ हम फैसले खौफ की वजह से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, कुछ फैसले खौफ की वजह से डिले करते चले जाते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अभी था ना इस गाने में, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। हमारी सबकी जिंदगियां ऐसी ही हैं, हमें समझ नहीं आता। हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, हम सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को समझते हैं? हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो रियल हैं, या जो लोग समझते हैं कि ऐसे जिंदगी होनी चाहिए हम उनको फॉलो करते हैं? सो अपने आप को जानने का मतलब अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपने जज्बात या इमोशन को समझना, अपनी गलतियों का सामना करना। जो शख्स अपने जात को समझ लेता है वो दूसरों को भी ज्यादा हमदर्दी और बर्दाश्त के साथ समझने लगता है। जब हमें पता चलता है ये खराबियां या खूबियां हम में भी हैं, तो हम दूसरों के लिए भी थोड़े टॉलरेंट हो जाते हैं। तो दूसरों को समझना वाकई मुश्किल है, या असल मुश्किल अपनी जात के इन पहलुओं को पहचानना है जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। शायद जिंदगी की सबसे तवील मुसाफत वो नहीं है जो हम दुनिया में तय करते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने अंदर की दुनिया को समझने में वक्त लगा देते हैं या तय करते हैं, वो ज्यादा लंबा अरसा है।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: ਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Darling it's my last season of coffee with Karan why would I do anything controversial just trust me yeah
3: okay yeah love you too
4: coffee with Karan season 9 watch it only on Jio Hotstar
5: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan advertise your service here 01612508222 Leica Radio Greater Manchester
6: मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक

0: से निराला। मैपस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All मैपस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं, बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें। पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें।
3: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk. Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: ते गोल गप्पियां दा पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah. Love you too.
3: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
5: आपको का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: Still some delays as you head westbound of the M56 tonight. We've got a partial blockage there because of an obstruction. Duncan 3A at Bagley through to 4 at Withenshaw. Hardwick traffic struggling as well with the traffic lights all out of order. Downing Street, that stretch of the A6 approaching Mancunian Way, does mean a bit of confusion on approach. Also some disruption around Withenshaw. Southbound Princess Road currently partially blocked because of an obstruction as you approach the M60. Fairly slow as you head out of Manchester as well. Mancunian Way from Ancoats through to Salford. Busy as you head on the clockwise side of the M60 over Barton Bridge. Still stop start there approaching Junction 12 at Eccles. Taking about 20 minutes to get through.
0: Drive is sponsored by Pepe's. Now with 272 stores nationwide. Find your nearest Pepe's on the Pepe's app.
3: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: बात क्या है बंटू?
5: अरे बोलो काक भसुंडी।
6: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
5: अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तो
6: और लाइफ बन गई हेवन।
7: भाभी डायन है।
6: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
9: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज October 16।
8: आप सिर्फ मजे लो।
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you'd get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.com. co.uk.
11: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
0: Next, Anissa Nazir with The Big Show.
1: Leica Radio.
0: Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: ही प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही प्यारे वाले गाने हैं टू स्टार्ट द शो। वेल, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी सौतन इन द वोकल्स ऑफ द इंडियाज नाइटिंगेल, लता मंगेशकर। इतना प्यारा वाला गाना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस मूवी। सो सौतन वॉज द फर्स्ट हिंदी मूवी to be ever shot in Mauritius. And क्या आपको पता है कि टीना मुनीम का जो रोल था was first offered to Zeenat Aman and then Parveen Babi, but both of them actually refused the role, and then of course Sawan Kumar Tak, who was the director of this movie, offered this role to Teena Muneem, and I think she did a beautiful role. उनका काम बहुत ही अच्छा था as Rukmini. अच्छा, इस movie में और एक actress थी, आप मुझे मैसेज कीजिए कि वो एक्ट्रेस कौन है। इनफैक्ट जिंदगी प्यार का गीत है वॉज एक्चुअली फिल्म्ड ऑन दिस एक्ट्रेस। सो मैसेज मी एंड टेल मी कि वो एक्ट्रेस कौन है। मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आई एम वीर इन फॉर द लवली अनीसा जी, गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 PM ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड।
1: व्हाट्सएप लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर नाउ ऑन 07703 40 30 20। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. Like a
2: radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: बात क्या है बंटू?
5: अरे बोलो काक भसुंडी।
6: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
4: अरे नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ?
5: तो क्या?
6: और लाइफ बन गई हेवन।
7: भाभी डायन है।
6: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज October 16।
8: आप सिर्फ मजे लो।
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy, powered by Like a Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: New at Pepe's.
13: Pepe's Melts.
12: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
13: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
12: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
13: New melts, only at Pepe's.
1: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 822.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester or download the Leica Radio mobile app.
15: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
16: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
17: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
17: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
17: Leica Radio.

एक प्यार का नगमा है दिस प्यारा वाला गाना. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर. लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी प्यासा सावन. आई थिंक दिस वाज अ ब्यूटीफुल मूवी. जितेंद्र एंड मौसमी चटर्जी, उन दोनों की केमिस्ट्री इन दिस सॉन्ग वाज सो स्वीट. यू नो स्पेशली मुझे वो एक बहुत ही प्यारा सीन लगता है व्हेन इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, बट स्टिल यू नो मौसमी चटर्जी थोड़ा सा कोशिश करके शी मेक्स दिस राइस एंड देन शी एक्चुअली फीड्स जितेंद्र, एंड मुझे वो सीन बहुत ही प्यारा लगता है. एंड देन इन दिस सॉन्ग एज वेल यू नो उनके पास दूध के लिए पैसे नहीं होते तो शी मेक्स दिस ब्लैक टी फॉर हिम एंड द एक्सप्रेशंस बिटवीन द टू ऑफ देम वर सो सो सो स्वीट. अच्छा, इस मूवी में एक और हीरोइन थी, सो यू गॉट टेल मी कि वो हीरोइन कौन थी. मैसेज मी, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. आई एम सुपर हैप्पी दैट यू आर एंजॉय द शो. वेल, अनीसा जी का शो है तो बुरा तो हो नहीं सकता, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है टू प्ले सम प्यारे प्यारे गाने फॉर यू. आई एम वीर इन फॉर द लवली अनीसा जी ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: व्हाट्सएप लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर नाउ ऑन 07703 40 30 20. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Anisa Nasir with The Big Show. Leica Radio.
2: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक्स, यू माइट बी सरप्राइज्ड टू हियर द सिम्पटम्स डोंट ऑलवेज फील सीवियर. यू कैन एक्सपीरियंस अ स्क्वीजिंग अक्रॉस द चेस्ट, अ फीलिंग ऑफ अनईज. Sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales at leicamedia.co.uk.
9: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: Navratri special on Leica, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
10: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
10: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
10: Leica Radio.
11: Don't

0: किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है. दिस सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड शैलेंद्र सिंह फ्रॉम द You know, it's a very funny movie, Rafu Chakkar. If you've not watched this movie, तो मैं recommend करूंगा ये movie देखो. ऋषि कपूर and Goofy Pantel have done a fantastic job. You know, I actually, अगर आपने नहीं देखी तो मैं story reveal नहीं करूंगा, but बहुत ही प्यारी वाली movie है. You know, जब कुछ feel good movie देखनी हो, थोड़े बहुत popcorn साथ में हो, एक diet coke साथ में हो, तो क्या बात है. You know, this is like a perfect movie to watch. And of course, the chemistry between Neetu Singh and Rishi Kapoor is so good. They are actually one of my favorite on-screen and off-screen couples. बहुत ही प्यारी जोड़ी थी इनकी.
1: Like a radio. मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
0: Another super hit song from the super hit movie Sagar in the vocals of Kishorda and Lata Mangeshkar. Well, मैं गाने का नाम नहीं बताऊंगा, आप तो सुनी लोगे.

0: और
1: सावन का महीना पवन करे शोर।
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: Laika Radio.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही

0: ये लड़की है या शोला इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी सिलसिला. वेल, इस गाने के बाद वन मोर सॉन्ग एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. दिल तो नहीं कर रहा बट बाय तो बोलना ही पड़ेगा. बट रिमेम्बर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर. यू कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड. एंड आई प्रॉमिस कि मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलूंगा. टिल देन स्टे सेफ एंड एंजॉय द लवली सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट.
1: वी आर द लाइक अ रेडियो नेटवर्क नाउ विद 3 एशियन रेडियो.